0: फिर मनु तुनाई दश में पहा अनु तुनाई दश में हाथा लखंड रेडियो आईटीएन
1: विलाव पसरो देखाई

0: फिल्म अनुतुनाई दशम पहा अनुतुनाई दशम हाता लखंड रेडियो आईटीएन
1: विलंस अवसतुनाई
2: विलाव उपवित गिनावी

पावे। शोक रोग भय अनतुरु अमनुष्य उपद्रव राज भय सुर सतुरु करदर गिनी बिय तेरे संगत सतुन के सितुवन सियलु उपद्रव दुरिं तुरु वेवा।